युद्ध बारे अफ्रीका वाले कहंदे हन कि युद्ध दा पहला शिकार सच हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

वक्त की पाबंदी मेहनत सिदक दे नाल लोहार दी वर्कशॉप कार दा कारखाना बन सकती है ठेले दा ट्रक बन सकता है खोखे वाले दी दुकान बन सकती है विचार नरेंद्र सिंह कपूर किताब डूंगियां सिखरां विचारां नाल जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

0: झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इस लिए असि लेके आने तोडे लई ताजा तरीन सोहनिया ते खुशनुमा सच्चिया ते सुच्चिया खबरां दा सिलसिला। देश ते विदेश दीआं खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल, जो दवेगा तुहानू तोडे कल अज ते कल दी पूरी खबर। तुहाडा अपना हरमन रेडियो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा।

0: उतो को जवान सवारी आ गई, मैं समझा फर जवान करने वाली मशीन है।
1: मैं सोचा मेरी वोटी जे किधरे आ जांदी, ओ भी बन जांदी कुड़ी चिड़ी जे झूठा खांदी। इन्ने विच होर एक बाऊ आया मुछा ना दाड़ी, बई रब भलेखा खा जाए जे ओ बन लै साड़ी। ओनू भी विच बहा के ओने बटन दबाया।

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
1: अपनी समर्था नालों वधेरे देना मेहरबानी हुंदी है पर अपनी लोड़ नालों घट लेना निम्रता खवांदी है। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बात पंजाबी।

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: दोस्ती दोस्ती मोह दी सिखर अते अपनत दे मग दे एहसास दा नाम है। दोस्ती मना दे अंदर पल दे सच्चे साथ नु व्याख्या जा सकता है। दोस्ती मनुखी रिश्तियां दा ओ फुल है जिदे वर्गा दुनिया विच होर कोई फुल नहीं, जिदे वर्गी होर कोई सुगंधी नहीं।

0: They know my name, Gorilla Howdy. Down below.
1: ज़माने बदल गए, अंदाज बदल गए, कुछ तो है जो आज भी ठहरिया होया, जिदे नाल मैनू रोजाना समय दर समय महसूस हुंदा अपनापन, पुराने गीतां दी खुशबू, सत्थां दी महक, जिंदगी दा जशन, खूबसूरत कविता, जेठ दियां रुत्तां, सौण दे छराटे, पतझड़ दे एहसास, कुछ तां है जो महसूस हुंदा है। भुलियां विसरियां कहानियां, वेड़ियां दी सांझ, तारियां नाल सजिया होया अंबरां दा थाल, वाडी दा मौसम, झोनिया दी ढोलां ते पैंदी थाप, बोर्ड ते पूलियां दे उत्ते बिस्तरा विछा राखी करना, कुछ तां है जो अजे भी बाकी है। रावी दे पानी, सतलुज दी महक, प्रभात दी पानी, तरकाला दी रहरास, रात दियां बातां, कुछ तां है जो अज भी गुनगुना लईदा। ਇਹ ਆਪਣਾਪਣ, ਇਹ ਸਾਂਝ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹਨੇਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।

जे इंसान नू जिंदगी च सब कुछ मिल जावे फिर जीवन दा कोई मजा नहीं आउंदा, क्योंकि जिंदगी जीवन दे लई एक कमी दा होना बहुत जरूरी है।

अर्बन रेडियो दिल पंजाबी जज्बा पंजाबी पंजाबी। युद्ध बारे सियाने कहंदे हन कि जेड़ा युद्ध लई काली करदा है उसनू ए नहीं पता हुंदा कि युद्ध मौत दा वसीला हुंदी है।

का सफर हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया मुड़ हाजिर होने आ एक छोटे जे वक्फे तो बाद सुनते रहो आवाज भी खूबसूरत परवाज हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सेंड अस मैसेज ऑन info@harmanradio.com

0: हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन।
1: विरोध नाल दोवें धिरां चकन्नियां रहिंदियां ने, मुकाबले नाल दोवें धिरां विकास करदियां ने, झगड़े नाल दोवें धिरां निगरदियां ने, ते सहयोग नाल दोवें धिरां सफल हुंदियां ने। जेड़ा ढंग ठीक लगे अपना लेना। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया दे नाल। दिल पंजाबी, जज्बात पंजाबी।
2: सज्जणा की फरमाइश से अमन हेर दे म्यूजिक दे विच मैं दोबारा अपना गीत पेश करन जा रहा। मित्रां दी मोटर ते कच दी गलासी खड़के।
3: Yeah, back again myself MC Special alongside K Smuck and Amon here bringing you

परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिया राम। गुरु प्यारियो, सिडनी समय अनुसार शाम दे 5 बज चुके ने, ता आओ दुनिया भर विच वास्ते पंजाबियां दे हरमन प्यारे हरमन रेडियो दी मार्फत सरवण करदे हां श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब तो बख्शिश होए।

0: तो ना श्री राग विच शब्द है, शब्द की बंदिश छंत रूप विच मेरे साहब जी की है, अते ताल दे संबंध विच पहले घर विच गावन की हिदायत की है। राग ते ताल दोहां दा समेल कीर्तन दा रूप धारण करदा है। मेरे साहब जी शब्द की आरंभता विच उस करते दा आराधन करदे, ओ एक है अनेकता विच समाया पर एक है, ओ अंकार चूके निरंकार आकार आप बनाया, तमाम आकार चाहे जलचर ने चाहे थलचर ने चाहे नभचर, कुछ आकाश विच उड़न वाले नभचर, 42 लाख जी जलमय होते जलचर ते कुछ धरती ते चलन वाले थलचर, तमाम आकारा नू करता आप बनांदा है ते अनेकता दे कारण विच अपनी शक्ति अपनी जोत टिका के आकारा नू टिकाई रखदा है। पर कमाल दी गल ए है, अनेकता विच रहिंदिया होइआं आप फिर भी एक है। उस दा अनुभव करन लई जानन लई सतगुर प्रसाद गुरु दी कृपा दी लोड़ है। गुरु कोल आया ही रब दा पता चलदा, गुरु दी कृपा रहमत हो जाए ते जीव ते परमात्मा दा मिलन हुंदा है। साहिब दी रहमत बन आए, आओ शब्द की आरंभता मेरे साहब जी धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान पातशाह जिन्ना दे दर तो दिन रात बरकत वरतदी है। ये दर है जिथे दिन रात पेट भरन का भोजन भी मिलता है, जिथे दिन रात अंदर दी सुरत नू समावन दे लई शब्द कीर्तन का भजन भी मिलता है। इत्थे ओ दर है जिथे दुनिया भर में जिसनू कोई ना पुछदा होवे मेरे साहब दे दर ते आके मान भी मिलता है, इस दर ते आके तान भी मिलता है, इस दर ते आके संसार दियां बरकतां भी मिलदियां, इस दर ते आके रुलियां फिरदियां नू मेरे साहब गले ला लैंदे ने। आओ उस धन गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन दर की बरकत शब्द रूप विच अंदर संभालिए जी।
1: हर जियो कृपा करे ता नाम त्याईया जियो।
0: मेरे वाहिगुरु जियो, अगर आप कृपा करो रहमत करो ता अंदर सुरत विच नाम त्याईया जियो। बोलना सुभाविक है पर अंदर हिरदे नाल त्यावना ये बहुत उची बख्शिश है। मेरे मालिक दी बहुत उची रहमत जिस दी झोली विच पै जाए ते फिर अंदर नाम त्याया जांदा है। वो जिहड़ा हिरदा हर वेले कुछ ना कुछ चितवना करदा सी वो हुण चिंतन करन लग जांदा है, वो अंदर हर वेले वाहिगुरु जी दा नाम आराधन करदा है। इस विच शक नहीं है, जिहड़ी गल अंदर दिल विच बैठ जाए वो रोकियां भी नहीं रुकदी, ते जे अंदर वाहिगुरु जी दा नाम हिरदे विच बैठ जाए ते फिर नाम त्याया जांदा है। मेरे साहब जी जे आप कृपा करो ता
1: सतगुर मिलै सुभाए सहज गुण गाईऐ जियो।
0: रब दी रहमत होवे ते सतगुरु मिलदे ने। असीं जिन्ने वी आ ना बहुत वड्डियां भागां वाले हां, सानू ओ सतगुरु मिले ने जो साडा जीवन दा सहारा ने। तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजन आरजियो। गल थोड़ी ध्यान च रखियो, जे रब हर वेले साडे नाल नाल है ते सतगुरु दी भी बख्शिश ऐसी है, गुर मेरे संग सदा है नाले, ते ऐसे सतगुरु दा मिलन रब दी रहमत नाल हुंदा ते फिर अंदर रब्बी प्यार पैदा हुंदा है। सतगुर मिले सुभाए अंदर रब्बी प्यार सहज आपा टिक जांदा है। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸਹਿਜ। ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈਆ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੇ ਕੀਤੇ।

0: फिर गुण गाए बिगसै, चूंकि नानक भगतां सदा विगास। जिवें जिवें गुण गाउंदा अंदर खिड़ाव पैदा हुंदा, अंदर हिरदा, मैं बेनती कर लगा, खुशी विच भर जांदा है, अंदर एक बड़ा चाह पैदा हुंदा है। फिर दिन रात अन दिन उस मालिक दे गुण गाउंदिया विगास में चला गया। पर जा आप साचे पावे, शर्त यह है जे उस सच्चे वाहिगुरु जी नू कोई पा जाए, कोई प्रवान हो जाए, तो जरा गल ध्यान च रख लियो, जेड़ा मालिक दे काबल बन जांदा है, अमृत वेला है, गुरसिखी जीवन है, सिमरन है, नितनेम है, शुभ गुण पल्ले बन्ने ने, सेवा विच जुड़िया, करते दी नजर विच पा जांदा है, प्रवान हो जांदा है। ते जेड़ा करते दी नजर विच प्रवान हो जांदा है, उस दी झोली विच रब लखां खुशियां भर देंदा है, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। मेरे साहब जी कहिंदे ने फिर वो सिमरन करदियां करदियां अंदर हर वेले आनंदत अवस्था विच रहिंदा है जी।
1: अहंकार हौं मैं तजै माया, सहज नाम समावै।
0: इस विच शक नहीं है भी सूरज निकले ते अंधेरा नहीं रह सकदा। जिथे वाहिगुरु जी दी कृपा नाल सिमरन दी अवस्था बन जाए, नाम चले, उथे हंकार नहीं रहिंदा, उथे हौमै नहीं रहिंदी, क्योंकि हौमै नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै इकठाए। ये नहीं है भी सिमरन भी करदा होवे ते अंदर हौमै हंकार भी रहे ते, नहीं, फिर हंकार हौमै तजै माया, माया भी मोह छड़ दिंदा, रब नाल प्यार पै जांदा, फिर अंदर हौं हौं नहीं करदा। वो जिहड़ा अंदर हौं हौं करन वाला सी वो उल्ट जांदा, हा हा, ते ऊड़े नू औंकड़ हौं बनदा। हुण ऊड़े नू औंकड़ ते हा हा बन गया, ओ तू बस कबीर, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा परका मिट गया, जद देखो तत तू, हंकार हो मैं तजै माया, सहज नाम समावे। अंदर टिकिया होया नाम विच इतना इकमिक हो जांदा है, बस गल सुनदा भी नाम दी, करदा भी नाम दी, कदम उठदे भी नाम दी बख्शिश नाल। ते साहिब कहिंदे ने फिर इस तरह टिकाऊ नाल नाम विच लीन हो जांदा है जी।
1: आप करता करे सोई, आप दे ता पाईऐ।
0: वाहिगुरु जीओ करता आप हो, सब कुछ करन करान वाले आप हो, जे तुसी कृपा करके ए रहमत कर दियो ते फिर जिसनु आप देवो ए बख्शिश, ओही झोली विच ए बख्शिश पवा।

अपने नाल मिला लो, मैं आप जी दे महल विच पहुंच जावां, मैं आप जी दी हजूरी विच चला जावां, सो दर आ गया हां, सो घर चला जावां, ते सो घर तो सो पुरख तक पुज जावां। ये मेरे मालिक दी रहमत ते बख्शिश धन गुरु रामदास पातशाह जी अज दे हुक्म विच कीती है। आओ लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन उपदेश शर्म

0: आटे तो इलावा ताजा बेसन, लड्डू वाले स्पेशल बेसन, मल्टीग्रेन आटा, काबली छोले, मसरां दी दाल, चना दाल, सोयाबीन ते बादाम भी साडे अपने प्रोडक्ट हैं। वधेरे जानकारी लई विजिट करो karewalgoldengrain.com.au या फोन करो 0428895564।
1: आ गया तुहाडा ताया आस्ट्रेलिया दे ब्रिस्बेन चो। ओ आजो ताया जी, वेलकम। ताया अज रात साडे कोल ही रहना पऊ थोनू। ओ मैं आ ता गया, मैं ता नींद इंडिया आले गद्दे ते आउंदी आ। इथो किथो मिलू इंडिया आले गद्दे? लो ताया, आपां लै आउने इंडिया आले गद्दे पंजाबी फर्नीचर तो। पंजाबी फर्नीचर? जी हाँ, पंजाबी फर्नीचर एथो मिलदा, सारा इंडियन फर्नीचर जो भी तुहानू चाहिदा सब एथो मिलू। मंजे, धार्मिक फोटो, चादरां, साइकिल, चूल्हे, दातियां, रंबे, कई सब कुछ एथो मिलू। ताया जी लाया था, तू मेरी टेंशन दूर करती। नाले तेरी ताई कहिंदी सी भी पता करी इंडियन बॉक्स बेड दा, ओनू वाला फिकर लगा रहिंदा लीड़े लते सामने दा। लिया फिर पता लिखा फिर पंजाबी फर्नीचर दा। लिखो फिर 2A130 किंगस्टन रोड अंडरवुड ब्रिस्बेन। आ कॉल कर लियो ताया जी 0404000536 ते। वेबसाइट है जी punjabifurniture.com.au। नवी अपडेशन दे लई फॉलो करो फेसबुक पेज नू @punjabifurniture।
2: अपनी बिजनेस की तरक्की लई तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपनी बिजनेस की एड देण लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नू स्पॉन्सर करन लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
3: बहाने बारे सियाने कहंदे हन कि जिस नू नचना ना आउंदा होवे ओ कहंदा है धरती गिल्ली है। सुने विचारां दे।

रोटी हजम नहीं होंगी। वरतों गोल्डन ग्रेन फ्लोर मिलता गरेवाल चक्की आटा ताजा घट कैमिकल की वरतों वाली कणक जेडी के सीधी खेतों चो मिल च लाई जाती। आस्ट्रेलिया का बनिया शुद्ध आटा ताजा खाओ ते तंदुरुस्त।

0: चाचा जी तुहानू हलवाई ते खेती बाड़ी दे काम च कोई फर्क नहीं दिंदा?
1: कोई फर्क नहीं ना, फर्क किवें नहीं? SDM जी ए दसो के खेती बाड़ी च की काम करने पेंदे आ?
2: हल वाहने पेंदे आ।
1: ते फिर मैं भी ते यही अर्ज कर रहा हां के जेड़े लोग हल नाल वाही करदे ने उहनां नू हलवाई कहंदे ने। ते तू मिठाइयां वाले समझी जांदा?
3: वेरी स्मार्ट चाचा जी, वेरी स्मार्ट।
0: ऐसे चतुराई दी तां खट्टी खांदे आ।
2: चाचा जी मैं तुहाडी चतुराई दी इनू तां मनूंगा, गुआंढ च मेरा 5000 रुपया फसिया पिया, जे किते ओ कढ़ा के दिखा दो तुहानू मैं तां मनूंगा।
1: यार तू किदां दा SDM, ओ भी पंजाबी जिनू जेब चो पैसे भी कढ़ाउणे नहीं आउंदे। नाले तीए थाओ मैं क्यों पावां अपने गल च स्यापे? मैं तां सिर्फ तरीका दस सकदा, जे कढ़ा सकदा तां पैसे कढ़ा लई आपे।
2: जल्दी दसो केड़ा है तरीका।
1: मान ला तू मेरे पैसे देने आ ते मैं तेरे घरे आके लेने आ।
2: अच्छा,
1: तू अपनी अड्डी चोटी दा जोर ला ली ते मैं तेनू पैसे कढ़ा के दिखाऊ।
2: ठीक है,
1: तैयार?
2: हाँ तैयार।
1: आवां फिर?
2: आजो।
1: SDM जी घरे हो?
2: आहो।
1: जनाब ने 5000 रुपया लिया सी।
2: आहो लिया सी, फेर?
1: फेर की? मेरे पैसे मोड़ते मेनू तोर।
2: नहीं मोड़दा लाला जोर।
1: मैं जुत्ती लानी है ला ते तू बाद च कहना एदी किसी लोड़।
2: जुत्ती लानी कोई खेल है?
1: मैं तेरी हुणे बना देनी रेल है ते फेर ना कहीं सवारियां वेख दियां।
2: ओ वेखी जान।
0: SDM तुहानू चाचा जी दा पता नहीं, इन्हां ने थोड़े करे थोड़ा ही जुलूस कढ़ के रख देना। मत्थे मारो पैसे।
2: ओ केड़े पैसे?
1: नीलू हुण तू पिछे हो जा, इन्हें आए नहीं मोड़ने पैसे। पैसे तो हुण मेरी जुत्तियां कढ़ाऊ।
2: हाय मर गया, आए मर गया।
1: साला कहना मैं पैसे नहीं देने।
2: ओ बंद करो।
1: पैसे के नहीं देने?
2: हाँ ना मारो।
1: पैसे तो तेरा प्यो भी दू।
2: छड़ दियो।
3: चाचा जी ये नीलू दे SDM आ, आ की कर दियो?
1: भाई अपनी अग्राही करते हैं।
2: ओ बंद करो।
1: असि केड़ा बाणियां को बही खाते भरदे हैं।
2: ओ मर जाएगा जे।
1: असि तो फिर जुत्ती नाल हिसाब करदे हैं।
2: ना मारो।
0: चाचा जी कुछ ते करो संग।
2: नीलू चाचा जी दी जुत्ती नु ब्रेक लाओ, मैं सिख लिया अग्राही दा ढंग।
1: अजय किथे सिखिया?
2: आए मर गया।
1: जे सिखिया हुंदा हुणू पैसे ना मोड़े हुंदे?
2: ना मारो।
1: जुत्तियां खाण दी बजाय हाथ ना जोड़े हुंदे?
2: मैनू माफ कर दियो, मेरी तौबा, मेरे प्यो दी तौबा। आ चको पैसे।
1: ए ता हुई ना गल।
0: हुण की स्वाद आया, 100 छित्तर भी खा ले ते गंडे भी खा ले।
2: ठीक है, हुण मैं प्रैक्टिस करांगा। चाचा जी तुसी बैठो, मैं पैसे ले आना ना।
1: भाई जिदे कोलो पैसे लेने आ ओदे नाल तरीका अजमा। मैं ता तेनू समझाउणा सी तो दित्ता समझा।
3: नहीं चाचा, हुण रैसल जरा तू ही करवा।
1: ठीक आ, आज वे रैसल कर लवे।
2: चाचा जी हुण जरा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा।
1: आ जा।
2: चाचा जी घरे ही हो?
1: कल नू आई, अज मैं नीलू दे घर। अच्छा, आ जा आ जा आ जा।
2: जनाब ने 5000 रुपया लिया सी उधार।
1: हां जी लिया सी, बहुत चिर दा।
2: ते फिर मोड़ो, ओ तुसी आप ही नहीं लभदे, मैं सा परसों दा चक्की फिरदा।
0: चाचा जी दिस इज नॉट फेयर।
2: चाचा जी मैं चीटिंग नहीं चलन देनी, इनकार तुहानू करना ही पेगा।
1: इनकार करके मैं छित्तर खाने? नाले जद मेरे कोल पैसे है गया, मैं क्यों जवाब देवां? इन्ना थोड़ा तुसी मौके सर मेरा काम सारिया। नाले टाइम सर मोड़ के गाहां नू थो तो लैण वाला बणू।
2: अच्छा नीलू, मैं अंदर जाके फिर पहना।
1: चाचा जी तशरीफ तो रखो।
2: तशरीफ किवें रखां? रखण जोगी तो छड्डी नहीं।
4: हरमन रेडियो।

0: हरमन रेडियो
1: 24 घंटे 7 दिन।
2: हाय, आई एम उदित नारायण एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू हरमन रेडियो।

0: अपने बिजनेस की तरक्की ले तुसे भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने ले जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन ले संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ
2: ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ
3: ਸੈਡ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ

जेवफा करके भी ऐसी बेवफाई कहा है, जेवफा करके भी ऐसी बेवफाई कहा है, उन लख तरले भी कर लेगा ना सजड़ा, उलके भी तेरे कुल वापस ना आए।

सुनो भी दोस्तों, भावे बैठे हुए हो या खड़े हुए हो, घर वाली नाल रसे हुए हो या फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो या फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो या फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमन रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तो चाहे पिंडा विच बसदे हो या फिर बसदे हो पिछे शहरां, हरमन रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां।

0: विजिट करूं।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमल रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया दा पहला पंजाबी रेडियो हरमल रेडियो।

अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com या harmanradio.com ते एडवरटाइजमेंट सेक्शन।

अध्यापकों बारे एक विचार यह है, सच्चे अध्यापक अपने आप नूं पुलां वांग वरतदे हन अते अपने विद्यार्थियों नूं अपने उपरों पार लंघ जाण दा सद्दा दिंदे हन। उन्हां दे पार लगाण नूं सौखा बनांदे होए आखिर खुशी खुशी ढेर ढेरी हो जांदे हन तां कि अगे ओ अपने पुल उसार सकन। चंगे विचारां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।

देश मत छा सज्जन परीत लगा के दूर देश मत जा बसो हमरी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला ते कदी आ मिल सांवल यार वे कदी आ मिल सांवल यार वे मेरे लू लू चीख पुकार वे तेओ कदी आ मिल सांवल यार वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस ना पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस ना पास वे मुझे मिले ना चार कहार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे कुछ हर चाई की बाहों में कुछ यार फरीद की राहों में ओ कुछ हर चाई की बाहों में कुछ यार फरीद की राहों में मैं तो बैठी सब कुछ हार वे ओ कदी मिला सावल यार वे मेरे लोलो चीख पुकार वे ओ कदिया मिल सांवल यार।

0: what's happening in music, culture, community events.
1: Harman Radio
2: brings you the best from UK, Canada, USA, and India.
3: This is a special, so completely different.
0: What's happening in music?
4: Smashing comedy.
5: कौन है भाई सवेरे सवेरे
6: साले असी भी कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेडियां
7: जेड़ा वो कंजर बाहरों आया ओदी संग कर लो
8: कैन आई गो नाउ
9: Harman Radio.

0: Harman Radio 24/7.
1: शीशे उत्ते तूड़ा जमिया कंधा चाड़ी जाते ने जिलदा सांब रहे ने चले वरके पाड़ी जाते ने ओना ता भी तुई हो रापे एता अज जवाब दिते एता वाले दिन वे जेड़े करन तिहाड़ी जाते ने जिन्ना ते कल लीरा पिया उन्ना वल्ल तकदे नहीं कबरां उत्ते तिले जड़िया चतरां चाड़ी जांदे ने रस्सी कित्थों तीक करेंगा टिली उन्ना लोकां दी जेड़े एक हवेली बदले चुकियां साड़ी जांदे ने शीशे उत्ते मले स्याहिया हक है मेरे दुश्मन दा सजना नूकी की बनिया मेरे फुल लिताड़ी जांदे ने चल ओए पापा नसमी अपने पिंड नूं मूंह मोड़ लईए शहर ते वसनीक दा अपने शहर उजाड़ी जांदे ने अपने शहर उजाड़ी जाते हैं।

0: हर प्रोग्राम दी जानकारी, रेडियो दी हर गतिविधि ते नजर। ज्वाइन करो साडा फेसबुक पेज facebook.com/harmanradioaustralia जां जुड़ो टेलीग्राम ते telegram.me/harmaninfo। वधेरे जानकारी लई विजिट करो साडी वेबसाइट harmanradio.com।
1: तुसी आनंद माण रहे हो पुराने गीतां दी महफिल दा।

0: कि दर्दे दिल की दवा न हो जाए, ये दुआ बद्दुआ न हो जाए। कि दर्दे दिल की दवा न हो जाए, ये दुआ बद्दुआ न हो जाए। जख्म भरने लगे हैं यादे सनम, फिर से तू मुद्दुआ न हो जाए। इश्क दारो रसन पे झूम जरा, जब तलक तो खुदा न हो जाए। एक लम्हा विशाल ही आलम, उम्र भर की सजा न हो जाए। एक लम्हा विशाल ही आलम, उम्र भर की सजा न हो जाए।
1: तो हाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे वही गीत सुनावांगे। हर मन रेडियो जी।

0: के दोप में फसो।
1: जट्टा के मुंडे साढ़े नाल है, ये चंडा गाड़ के बदमाशी करना है।
0: थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए।
2: चाचा जी जे इना प्यार सी आपस विच, फिर नीलू दे दादा जी दादी नूं छड्ड के इन्हां चिर फौज किवें नौकरी करे?
3: इन्ने चिर नूं बड़ा उत्थों पेंशन लैके मुड़िया सी, बारों बार भज आया सी।
4: हां हां, कौन कहिंदा बारों बार भज आए सी? कल्ले जणे बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मनां ते हमला करके आए सी।
2: जे कल्ले गए सी फिर तां खासा असला नाल लै गए होणे आ।
3: असला उसला कहिंदा सी वी पंज चार नींबू नाल लै गया सी।
2: नींबू कहदे लई?
3: कहना दुश्मना दे दंद खट्टे करन चलिया।
2: फिर करते
3: दंदा दा ता पता नहीं खट्टे कीते कि नहीं कीते, पर अपने मेजर नू पिछे वायरलेस जरूर करती। कहना साहब जी मैंने अकेले ही दुश्मन की पांच चौकियां फना कर दी। वेरी गुड, मैंने अकेले ही उनके 50-60 जवान हिरासत में ले लिए। एक्सलेंट, ऐसा करो उन सबको बंदी बनाकर वापस ले आओ। कहना जी आ नहीं सकता। क्यों? कहना जी आउण नहीं दंदे।
2: फिर वापस किवें आया?
3: ओ ता कुदरती है दी, दादी चढ़दी चढ़दी बॉर्डर क्रॉस कर गई। ओदी निगाह पै गई, उन्हें समझाया जी फौजी फूजी कोई नहीं, एवं सिधरा जिया ता कि जाके घरे आया।
2: चाचा जी जेडे नाल नींबू लै गया सी उन्हां दा की बनिया?
3: बांडना की सी सारा टब्बर हुण तक सिकंज भी पींदा। आज सिकंज भी तो याद आया, कुड़िए कुट पानी दी पला दे, झाकी जानी है कौड़ कौड़। चल फोके पानी नू मार गोली, सात सौ खड़ी होनी ओनू बुला के भोरा मिल लिए करा दे।
4: जिदा दिया थोड़िया आदत ने ना, ओ मिलना ता एक पासे, थोड़े वर्गे वाल झाके भी ना।
3: ओए तू एक बारी लिया के कुड़मणी कोलता बिठा दे, झाकी ता असी आपे जावांगे।
4: जे अपने नहीं ते कम से कम मेरी सास दे तौले झाटे दे ता भोरा लिहाज कर लो। उठिया उत्तो ना जावे, बैठिया उत्तो ना जावे।
3: भाई चल पाई दे दर्शन करा दे। भला नीलू तेरी सस दे दंद हैगे आ?
4: क्यों, तुसी की लेना है?
3: मैं उदे चुपण लई गंढेरियां लैके आया सी।
4: दंद पाल दे है, इस उम्रे माड़ी मोटी निगाह रह जावे ओ थोड़ी है।
3: ओए तू बुला ता सही, निगाह नू मैं केड़ा उदे कोलों कुड़ते दे काज कराउणे आ। ता छेड़छाड़ मैं करनी आ, तफे वाले दे पौणे आ।
5: हरमन रेडियो तुहाडे नाल 24 घंटे
6: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।

0: तेरी मुंदरी तांबे दी, तेरे दित्ते तोहफे मेरे तो सांभे नहीं जांदे। अज फेर एक वारी अंदर वड़ के बूहा लाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है। उस दे विच तां अज तक तेरिया यादा घूमदिया ने, हर कोने विच नव कहंदी दियां वाजां सुनदिया ने। खब्बी अख चो एक वार फिर अज अथरू आया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा मैं अज फिर चेते आया है। मेरे लिए तां अड़िए नी तू ही सब तो चंगी है, अजे ते केली उत्ते तेरी चुन्नी टंगी है। उत्थे बैठ फिर तेरे पसंद दा गीत चलाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है। कंध पुराणी दी खुड विच जो बालियां रखियां सी, तीन साल हो गए ने अज ना किसे वो चकियां ने। चमक चली गई पर रंग ओदां दा ओदां पाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है। तू ही ताए मांगट वाले दे दिल दी राणी नी, तेरी मेरी जग उत्ते बनू कोई कहानी नी। नव चंद्रे ने तां तेनू नी रूह तो चाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है। तेरा दित्ता होया अज मैनू एक खत भी दिसिया है, जिदे उत्ते वड्डा करके तू लव यू लिखिया है। ओनू चख उठ जाके चुल्हे दे विच लाया है, वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है। वो तेरिया यादा वाला कमरा नी अज फिर चेते आया है।
1: रीज पुगावांगे, मन चाहे अति गीत सुनावांगे, हर मन रेडियो जी।

0: जो हल करे मसले जो छोट ने मजंड धब लै गया छोट रखे असले जो हल करे मसले जो छोट ने मजंड धब लै गया
1: नंबर लिया मैं लहाऊ जमा कार्ड कदारी छब्बी चलिंजा बंद ला भी ठीक है ये तो सीटो सानू सने जरा दुआबे आले आलू सड़ जाते होंगे सड़कां दे एदा सीटो सोने
2: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत
3: मूरे रब बनाउंदा जांदा ते पिछे छड्डी जांदा।

योग्यता बारे सियाने कहंदे हन कि अयोग्यता साडे दिमागां च कड़ियां हद्दां चों पैदा हुंदी है। विद्या विचारी तां पर उपकारी।

मुहावरे बारे अरब दी कहावत है कि जिमे लून भोजन लई तिवे मुहावरा बोली लई। विद्या विचारी ता पर उपकारी। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया।

नमस्कार, मैं हूँ सनी देओल और आप लोग सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन पंजाबी स्टेशन हार्मन रेडियो। सुनते रहिए क्योंकि मेरे पापा भी सुनते रहते हैं। थैंक यू।

0: आवाज दी खूबसूरत प्रवास हरमन रेडियो आस्ट्रेलिया ते आप सब दा स्वागत है। रेडियो ते अपने गीतां दी फरमाइश ले तुसी साडे नाल ईमेल अते टेलीग्राम राही जुड़ सकदे हो। टेलीग्राम मैसेज करो इस नंबर ते 9197080149। तुसी सानू ईमेल भी कर सकते हो request@harmanradio.com।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी आहा टॉप गीत।
2: लड़ते चुत गरीले चंगा भी तकने आहो

0: मैं तेरी सरगी विच इशनान करके हटिया हां, मैं तेरी सरगी विच इशनान करके हटिया हां। तेरी उड़ीक विच मैं उही वस्त्र पहन के बैठा जो मैनू जन्म समय मिले सन। तेरी उड़ीक विच मैं उही वस्त्र पहन के बैठा जो मैनू जन्म समय मिले सन। मैले वस्त्रां नाल तैनू किवें उड़ीक सकता। तेरा हाथ सूरज दी पहली किरण विच आवेगा ते मेरी नंगी देह नूं छो जावेगा। देह दे रोम रोम अंदर बैठी इंद्री थरथरा उठेगी। गीता कहिंदी है इंद्रियां तो परे मन दी दुनिया है, मन दियां सेवावां तो पार बुद्धि, मन दियां सीमावां तो पार बुद्धि, बुद्धि तो अगे आत्मा है। मैं कहिंदा आत्मा तो अगे आदि जनक है जिस चो आत्मा जन्म दी है ते सृष्टि दे अणु अणु विच वंडी जाती है। तू आ तेरी छू दी तेरी छू दे जग दे बुझ दे अणुआ विच आदि जनक। तू आ तेरी छू दे जग दे बुझ दे अणुआ विच आदि जनक है ते मेरा आदि अंत भी ते मेरा आद अंत भी। उत्तम होन कोई नहीं पुछदा कमजोरां ते अपाहजां नूं घबराओ ना इस मौत तो क्योंकि जो प्यार दी मौत नहीं मर सकता वो एक तुरदी फिरती लाश है।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे मन चाहे असीं गीत सुनावांगे हर मन रेडियो ते।

0: अपने बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देने लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: अगले अद्धे घंटे च सुनोगे तुसी

0: अभी चलो काम ते सुनी जाओ हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
1: चार जी बैग नानी उत्ते नू मैं छे छे इंच चक्कियां टाइम लगू मिटने नू सानू थले

0: अपने बिजनेस दी तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देने लई जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करने लई संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ।

अरदास। किरना बांगर नंगे हो इक अंगे इक रंगे हो पावन जमना गंगे हो रावी चना तरंगे हो नेमन सूड़े जंडे हो गुंदे फुल कदंबे हो गिरी गवर्धन कंगे हो बेरी साहिब कंडे हो सरपा मणिया चंदे हो वन तित्तर दे खंबे हो मूल सवास मकंदे हो सूड़ी ते लटकंदे हो पीड़ा बजदे कंडे हो अगन कुंड पर चंडे हो अर्क बर्क सहरंगे हो हर चंदन पर संगे हो खाकी पोष पतंगे हो बल बल मरे पतंगे हो तू ते मैं जगदंबे हो चंगे हो मंदे हो आपा मिलिए बंदे हो आपा मिलिए बंदे हो।

0: पिता के लिए कटाए, बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए।
1: शहीदी दे के ऐसी खुद नु भी हैरान करदा हां, शहीदी दे के ऐसी खुद नु भी हैरान करदा हां, मैं अपने सीस नु सिर वास्ते कुर्बान करदा हां।

0: अपनी बिजनेस दी तरक्की ले तुसी भी हरमन रेडियो दियां सेवावां हासिल कर सकदे हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस दी ऐड देन ले जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नु स्पॉन्सर करन ले संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन च विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।

कीमत किने ना पाया, सब सुन सुनिया के सोए, सब सुन सुनिया के सोए। राग श्री राग विचों बाबे नानक दे इन्ना बोला नाल देश विदेश तो हरमन रेडियो दी मार्फत प्रोग्राम गावो सच्ची बाणी विच जुड़ बैठिया रब रूहां नू दलजीत सिंह मेहता चौंक वालों जियो आया नू सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिडनी आस्ट्रेलिया समय अनुसार अमृत वेले दे पांच बज चुके ने, ता आओ अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार

करै विचार, करते कै करनै नाही समार। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार, तौलै उपर केता पार। धरती होर परै होर होर, तिस्ते पार तलै कमन जोर। जी

ओड़क ओड़क पाल थके। वेद कहन एक वात, सैंस अठारा कहन कतेबा, असलू एक तात, लेखा होए तां लिखिया, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखिया, आपे जाने आप, साला ही साला, एती सुरत न पाईया, नदियां अत्ते वाह, पवे समुंद न जानिया, समुंद सा सुल्तान, गिरया सेती माल तन, कीड़ी तुल न होनी, जेत समनो न विसरै, अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने दे न अंत, अंत न

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ए वड़ ऊंचा होवे कोए।

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाएक आखन पाए। ओ जाने।

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापारिये अमूल भंडार अमूल आवे अमूल ले जाए अमूल पाए अमूला समाए अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रमाण अमूल बख्शीश

अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एक कावार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सते की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंतरांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, ता किया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामलसूर, तिन मैं राम रिया भरपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, ता के रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

हर का सिमरन सुन मन कानी सुख पावे हर द्वार पुरानी। रागौड़ी विच पंचम पातशाह दे ए बोल साडे लई बड़े लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, साडा अध्यात्मक जीवन संवर सकदा है। हर का सिमरन सुन मन कानी, इन्हां कन्नां राहीं हरी दा सिमरन सुनिया कर। ए सरवणो मेरियो साचे सुनने नूं पठाए। सच की है हरी दा सिमरन ते ओ सुनिया कर, सुख पावे हर द्वार प्राणी, उस मालिक दे द्वारे ते कबूल पाएगा। लोक ता सुधरना ही है, तेरा परलोक भाव प्रभु दा दर भी संवर जाएगा। उत्थे भी आओ बैठ आदर सब दियो, उत्थे भी तेनू सत्कार मिलेगा। ता आओ गुरु प्यारियो हरि दे सिमरन विच जुड़ना करिए, इन्हां सरवणा राही हरि जस सरवण करिए।

विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विलाही। जिन्हां जीवां नूं परमात्मा दी बंदगी तों विछोड़ा हो जांदा है, उन्हां दा हाल लंबी बीमारी नाल पीड़ित रोगियां वर्गा हो जांदा है, जो विलकदे ने करलाउंदे ने। तां आओ उस रब्बी जोत दे नाल जुड़न लई, जिथों ए जीव आत्मा ने सुखी होना है, सरवण करदे हां गुरबाणी दा एह।

0: प्रोग्राम गाव सच्ची बाणी। हुण समा है गुरवाणी कथा विचार दा। गुरवाणी कथा विचार सरवण करा रहे ने भाई साहब भाई राजविंदर सिंह जी। ता आओ करो मनोबिरतियां एकागर ते टुब्बी लाइए गुरवाणी कथा विचार दे सागर विच।
1: प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीरस इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह है मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सो फल फला, से सिमरह जन आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्यारी सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी रचना पंजवें नानक जी ने अपनी पवित्र रसना तो गौड़ी राग विच कीती है जी। ए शब्द श्री सुखमनी साहब जी दी पहली अष्टपदी दा तीसरा पदा है जी। अते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंग 263 उत्ते सुशोभित है जी। कृपालू महाराज कृपा करदे हन प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। प्रभु दे सिमरन करन दे नाल दुनिया दियां दौलतां करामातां ते नौ खजाने खुल जांदे हन। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। स्वामी दे सिमरन द्वारा ज्ञान हो जांदा है, ब्रह्म ज्ञान हो जांदा है, ध्यान लगन लग जांदा है अते तत् बुद्धि विवेक हो जांदी है, ग्रंथां दा सार तत् समझ आ जांदा है। प्रभ कै सिमरन सब की सुझ। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा। प्रभु दे सिमरन दे विच ही जप तप ते सारियां उपासनावां आ जांदियां हन। प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु दे सिमरन करन नाल दूजा भाव दूर हो जांदा है, केवल इक प्रभु च ध्यान लगन लग जांदा है। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी। प्रभु दे सिमरन नाल तीर्थां दा इशनान घर बैठे ही हो जांदा है। प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु दे सिमरन नाल दरगाह विच मान प्राप्त हुंदा है। हर पूंजी संच करो विहार, इहां सुख दरगह जयकार। हरी दे नाम दी स्वास स्वास जप जपदे आं, उहनूं पूंजी इकट्ठी करनी कहिंदे हन। मारे कृपा कर हर पूंजी संचोए नूं इकट्ठी करो ते करो व्यापार, इहदा व्यापार भी करो पर इहदे विच कोई लैण देण ना होवे, पैसा धेला ना होवे, प्रेम दे नाल इहदा व्यापार करो। दसो किसे नूं जिहड़ा जुग्यासू पुछण वाला जिहड़ा। हर पूंजी संचो करो विहार, इहां सुख दरगह जकार। तुहानूं इत्थे भी थोड़ा सत्कार होएगा, दरगाह दे विच भी सत्कार होएगा। प्रभ कै सिमरन होए सो भला। प्रभु दे सिमरन नाल इस तों भला ही होएगा, जो कुछ इहदे नाल होएगा उहनूं भी इह रजा करके मन्नेगा। प्रभ कै सिमरन सुफल फला। प्रभु दे सिमरन नाल अभ्यासी सोहना सुनखा नूर आ जांदा है, चेहरे ते फलदा फुलदा है। से सिमरहे जिन आप सिमराए। महाराज सिमरन दी ही गल बार बार करके आखिर च कृपा करदे ने, भाई सिमरन सब तो उच्चा है, सिमरन नाल बहुत बरकतां हुंदियां हन, पर सिमरन करदा कौन है? से सिमरे जिन आप सिमराए। सिमरन ओ करदे हन जिस ते ओ दया करदा है। दुनिया दी धन दौलत, बच्चे बच्ची

पज पार ब्रह्म नंकार। एक साचे नाम बाजो सगल दिसार। रागासा विचों धन गुरु अर्जुन देव पातशाह दे ए पवित्र बचन के जे तू अपनियां सियाणपां छड़ के, क्योंकि मनुख दियां सियाणपां किसे लेखे विच नहीं हन, सहज सियाणपां लख होए ता इक न चले नाल, तू अपनियां सियाणपां छड़ दे, सिर्फ परमात्मा दी बंदगी लग कर। भज पार ब्रह्म निरंकार। एक साचे नाम बाजो। सियाणपां नाल असी दुनियावी पदार्थ लोचदे हां ते सच्चे पातशाह कहिंदे जे नाम नहीं ना तेरे पल्ले, सगल दिस इशार। ए जिन्ने भी दुनियावी पदार्थ जो मालिक दे रहा है, इशार भाव सुभा रूप ने, इन्हां दा कोई मुल नहीं है। जे नाम है ते संसार दे पदार्थां दे विच विचरना, संसार विचों उन्हां नाल मेल जोल रखना, वह सब कुछ सफल है। पर जे नाम पल्ले नहीं है ता तेरा इस संसार दे विच आउना, संसार दे जीवां नाल विचरना सब अजाई है। ता आओ उस सच्चे मालिक कोलों नाम दी दात मंगिए। ए शब्द राही उस अकाल पुरख दे चरना नाल अपनी प्रीति जोड़।

0: विचार नाम दी, विचार शब्द दी, विचार अखुट खजाने दी, विचार महान उपदेशां दी, विचार दृढ़ता दी, विचार आत्मक अडोलता दी। प्रोग्राम गुरबाणी विचार विच रोजाना तुहाडे अपने रेडियो हरमन रेडियो ते वधेरे जानकारी लई लॉग इन करो harmanradio.com ते।
1: आद पूरन परमात्मा आद समय तो है, मद पूरन परमात्मा हुण भी है, पूरन है, अंत पूरन परमेश्वर है। संस्कृति विच रचिया ए श्लोक जैसी दीवार दा पहला श्लोक है। तो सतगुरु कहिंदे ओ संसार दे अंत विच भी पूरन होएगा और उस परमात्मा दी बंदगी करके उदा नाम सिमर सिमर के संत जन गुरमुख जीव तरदे ने। सिमरंत संत सरबत रमनंग नानक अगनासन जगदीशर है। गुरबाणी दे इस अथा समुंदर दे विच ए जो पवित्र श्लोक 705 अंग उपर दर्ज है। कई बार कई जीव जा पाठी सिंह इस नू गुरबाणी दे मध दा श्लोक गिन लैंदे ने, पर असलों ए परमात्मा दे बारे वर्णन है कि ओ सदा पूर्ण है। इस करके उस परमात्मा दी पूर्णता दा जो वर्णन है सतगुरां ने इस श्लोक राय कीता है। आपां भी इन्हां वहमां भरमां तों बाहर आके उस पूर्ण परमात्मा दे आओ गुण गायन

अपार अनूप राम दास पुर हर खां नानक संभल जाए नायसी रामदास सर। या फिर राखन हार अपार प्रभु ताकी निर्मल सेव राम राज राम दास पुर कीनी गुरुदेव। जिवें कि आप पहला गल कर चुके हैं कि अमृत सरोवर दे बाद विच दरबार साहब की संस्थापना हुई ते ये शहर बन गया अमृतसर साहिब। सिखां दी बहुत ही पवित्र भावनावां इस नगर नाल खास करके दरबार साहब नाल जुड़ियां होईयां ने। सिख सेवक भावें किसी देश किसी विदेश विच वसदा होवे उसके दिल विच इस पवित्र स्थान दे दर्शन इशनान दी तांग सदा बनी रहिंदी है। ये हुण नहीं जदों अबदाली जां होर हाकमां ने अमृत सरोवर पूरन तक दियां गल्लां कीतियां पाबंदियां लाइयां उदों भी सिख जिहड़े सन गाहे बगाहे जान ते खेड़ के गुरु घर दे विच हाजरी भरदे सरोवर च टुब्बी लाउंदे ते गुरबाणी सरवण करदे। शायद इन्हां पाबंदियां करके ही ये अल्फाज साडी अरदास विच जुड़ गए होण श्री अमृतसर जी के इशनान। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 1361 तो लैके 1363 तक धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी की बाणी है फुने ते इन्हां विच्चों 10वें फुने विच मनुख दे अंदर जो अकाल पुरख ने हर मंदिर साजिया है उस बारे जिक्र है। हर मंदिर हर साजिया उस मालिक ने साडे अंदर भी एक हर मंदिर बनाया है ते उस दी उस्तत करदिया पातशाह कहिंदे ने कि दुनिया दे बड़े सुंदर तो सुंदर स्थान होणगे पर हरी दे मंदर वर्गा कोई स्थान विधाते ने होर बनाया ही नहीं क्योंकि उहदा अपना घर है। इस नगर विच सत संगियां दा ठहराओ एडा सोहना लगदा है। ऐसे जो स्थान ने ऐसे नगर ने उत्थे सतसंगी ठहरदे ने ते इस दे अमृत जल विच टुब्बियां लाउंदे ने अपने पाप धोंदे ने ते आओ आपां वी हजूरी रागी भाई रविंदर सिंह जी दे नाल नाल शब्द कीर्तन सरवण करदे हां ते इन्हां बोलां नूं आओ अपने मन विच गुणगुणाइए ते इस अमृत सरोवर विच टुब्बी लाइए ताकि साडे वी पाप कसम्मल भन्ने जान। शब्द है डिठै सबे थाव नहीं तुद जेहा बदो पुरख बिदाते ता तू सोहया।

0: आओ सुनावा खान सियाणियां दा ज्ञान। लो जी अज दा मुहावरा रख प रखा पत।
1: इस दा भाव है कि जे तुसी चाहुंदे हो कि लोक तुहाडी इज्जत करन तां तुसी भी लोकां दी इज्जत करो।
0: मुहावे अते अखाण साडी अमीर सभ्यता दियां निशानियां। हरमन रेडियो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया।
2: सुनो भी दोस्तों भावे बैठे हुए हो जा खड़े हुए हो, घर वाली नू रसे हुए हो जा फिर बापू नाल लड़े हुए हो, काम ते जा रहे हो जा फिर काम तो घर वापस आ रहे हो, ओ भाई नहा रहे हो के कुछ खा रहे हो जा फिर घर विच रौला रप्पा पा रहे ने न्याणे, ओ भाई दुखी ना होवो, सब गल्लां छड्डो आ सुनो हरमन रेडियो तो गाने। तुसी दोस्तों चाहे पिंडां विच बसदे हो जां फिर बसदे हो पिछे शहरां शहरां, हरमन रेडियो सदा मंगदा तुहाडियां खैरां खैरां। ते लो जी हाजरां लैके प्रोग्राम लहरां लहरां लहरां। ऑस्ट्रेलिया दे सिडनी स्टूडियो तो सोमवार तो शुक्रवार तक सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक।

पेशकी करते हुए स्वेत दी ताज के संग ताजा खबर, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, मनमोहक संगीत, सेहत संबंधी सिलसिले, मुलाकातों का दौर अति सरगोशियां, मालवन तो माणो मेरे नाल यानी अमरदीप कौर नाल हरमन रेडियो दे प्रोग्राम लहरां दे विच सवेरे 8 बजे तो 10 बजे तक।

जर्मन रेडियो 24 घंटे 7 दिन। पेट बारे अमरीका की कहावत है कि हर घर एक काली पेड़ जरूर हुंदी है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, मेरा झूठ चढ़ जाए पतझड़ वांगू, खिड़ेगी हमेशा हकीकत खिड़ेगी। इस लिए असि लेके आने तुहाडे लई ताजा तरीन सोहणियां ते खुशनुमा सच्चियां ते सुच्चियां खबरां दा सिलसिला। देश ते विदेश दियां खबरां ते जानकारियां दी अपनी डेली डोज लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल। ਜੋ ਦਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ

0: Harman Radio
1: 24/7.
2: सलाह बारे फिलिपीन दी कहावत है कि जेड़ा सलाह मशवरे करदा रहे ओ गलती कट ही करदा है। विद्या विचारिता पर उपकारी।

0: HermanRadio.com जहाँ HermanRadio.com की एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: तुसी सुन रहे हो अपना हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन ऑस्ट्रेलिया का पहला पंजाबी रेडियो हरमन रेडियो 24 घंटे 7 दिन
2: हरमन रेडियो
3: तो हाडे मन दी रीज पुगावांगे मन चाहे असी गीत सुनावांगे।

इतिहास बारे कलिंगोन अनुसार इतिहास जेतुआं दा लिखिया हुंदा है। चंगे विचार विचारो अते जिंदगी विच लागू करो।

0: दोबारा इश्क होया ता तेरे नाल ही होवेगा। खफा जरूर हां पर बेवफा नहीं। एहो जिया होर सोहनिया रचनावां लई जुड़े रहो हरमन रेडियो दे नाल।
1: तुहाडे मन दी रीझ पुगावांगे, मन चाहे असीं गीत सुनावांगे हरमन रेडियो।

0: अपनी बिजनेस की तरक्की लिए तुसी भी हरमन रेडियो दी सेवावां हासिल कर सकते हो। हरमन रेडियो ते अपने बिजनेस की एड देन लिए जां किसी भी पसंदीदा प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन लिए संपर्क करो accounts@harmanradio.com जां harmanradio.com ते एडवर्टाइजमेंट सेक्शन विजिट करो।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ।